0: होली कोम्बुचा ड्रिंक कुलुम्बु कार को होली कोम्बुचा ड्रिंक अनु मिली गज बिबिरी अकुली बबो प्रीमियर डिस्टिलरीज लिमिटेड अब संगे में कगोमा बम्बो रोड आई नीड द कैंडी अति फार्मा सज्जा हनी मुई चामा चाफे वो फुनी एन कोलंबो कामो बालो वे दुके लिकुली ओकुम्पी ओकुमा ये बिसिंगा वो जेरो मुसा मुनाना बिरी जेरो बिरी एमु एमु मुनाना मुसांबो कुलुम्बु का कुलुम्बु का कुलुम्बु का को होली कोम्बुचा ड्रिंक ते कुकली जुवाबाली वासुए मिया के कुमिनो मुनाना
1: Chali ku radio budu ha radio eyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali ddala mwebali kupiranga ate mujje ku middeko mwebali kupiranga ate muuliriza kale no buluna ku Friday tuba no muchala rest mbatide namugema tubira naye ononno yamyo ku mwogezi wabanafe aba 40 betting abulijjo tuingira weekend era tu